फल त्यागम कुरु। समझाई जाए उसे, सर्वे कर्मोना फलनो त्याग कर। फलनो त्याग कर एम स्पष्टपणे फल छोड़ी दे एम नथी, पण फल माटे कर्म करनारो न थाय न थाय एम आगळ कह्युं छे के फल ऊपर तारो अधिकार ज नथी, कर्मणी एवा अधिकार असते। मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु, आ वात छे, मा कर्म फल हेतुर्भु। जे फल मेळवू छे एना माटे थईने तू कर्म करे छे, आ वात भूली जा। कर्मना फळनो त्याग कर, ए माटे तारे शुं करवू पड़शे? यतात्मवान, तारी जात उपर जय कर।

मायने रखती है, यानी कि सच्चा प्यार। प्यार कभी एक मुलाकात में हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग तीन चार या फिर ये कहे कि हजारों बार मुलाकात कर ले तब भी उन्हें एहसास नहीं होता कि उनके बीच प्यार पनप रहा है। पर छोटा सा एक, वो कहते हैं ना, हम खनक होती है, खलिश होती है जो दिल में चुभती है और आपको एहसास देती है कि प्यार ये था, बाकी तो सारे अपने अट्रैक्शन थे। यही बात हम करने के लिए यहाँ पर इस शो पर मिलते हैं और मैं आरजे दिलवर आप सबके साथ ऐसे किस्से और कहानी बांटता हूँ जो केवल रिश्तों की बातें बयां नहीं करता पर प्यार का एक मायना कुछ अलग से हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया में जब हम कुछ पाने के लिए प्यार पाना चाहते हैं उस वक्त प्यार का कुछ नाम ये भी हो सकता है कि आप उसमें इंतज़ार करें। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही बातों पे डिपेंड करने वाला किस्सा सुनेंगे, यानी कि हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस पूरी कहानी, इस पूरे शो के बाद में आप जो मुझे रिस्पांस देंगे उस पे आप और मैं एक अच्छा सा ओपिनियन बना पाएंगे कि क्या प्यार जीवन में सच में खुशियाँ और रंग और बहार लेके आता है या फिर थोड़ा बहुत दुख, दर्द या फिर जुदाई लेके आता है। जी हाँ, आज का जो किस्सा है, आज की जो कहानी है वो भी सच्ची है, पर मैं बांटूंगा आपके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आरजे दिलवर के साथ। सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0।

ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं कुछ काम के लिए निकलते हैं, और रास्ते में जो मिलते हैं, जिन्हें हम खुद को भी या फिर मिलने वाले लोगों को ये कह सकते हैं कि वो मुसाफिर थे। पर कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आपके जिंदगानी में एक जगह बना लेते हैं कि वो मुसाफिर होने के बावजूद आपके दिल के साथ जुड़ जाते हैं। वो कुछ पल की बातें, कुछ एहसास जहाँ पर चुप्पियाँ थी, कुछ तिरछी नज़रों से आपने उन्हें देखा था, उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान से आपको भी उस बात के लिए धन्यवाद किया था, ये सारी चीज़ें आपके दिल में कुछ ऐसा एक मकाम बना लेती है कि बाद में आपको एहसास होता है कि ये मेरे दिल के लिए सबसे सुकून देने वाला एहसास, यानी कि ये रिश्ता मेरा अपना था। और ऐसे अपने रिश्तों को हम क्या और नाम दे सकते हैं, प्यार तो होना ही था। और ऐसी मुसाफरी वाली आज की जो कहानी है, जिसका नाम है इंतज़ार। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था और मैं वापस उसे दोहरा रहा हूँ कि इस कहानी का मूल भाव जो है वो इंतज़ार है। अब इंतज़ार व्यक्ति का भी हो सकता है, इंतज़ार सही समय का, सही लम्हे का भी हो सकता है, इंतज़ार हमें अपने दिल से वो निकलने वाली आह का भी हो सकता है, वो चाह का भी हो सकता है कि जब आप ये सोचे कि मुझे अपने दिल की जो रंजिश है उसे बयां करना है, अपने दिल में जो ख्वाहिश है उसे भी बयां करना है, और मैं सामने वाले व्यक्ति को, अपने चाहने वाले व्यक्ति को मैं अब जान चुका हूँ कि मुझे यही चाहिए, तब ये इंतज़ार ख़त्म होता है। वरना फिर हम यही सोचते रहते हैं कि वो वक्त आएगा, वो इंसान आएगा, वो लम्हा आएगा, वो शब्द मेरे जहन में आएंगे या फिर मेरे दिमाग में आएंगे, वो अल्फाज जो मुझे मिलेंगे तभी मैं उसको बयां कर पाऊँगा। तो फिर वक्त आपको यही सिखाता है कि आप चाहे दिल के हाथों कितने ही मजबूर हो, पर सही वक्त पर सही बात सही इंसान से सही लफ्जों में या फिर सही आपकी दिल की फीलिंग से कही जाए तो आपको अपना प्यार मिल जाता है। आज की कहानी इंतजार में जो हमारे किरदार है उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, खुशबू और सुमित। खुशबू और सुमित की ये कहानी है जिसमें इंतज़ार आता है, पर इंतज़ार से पहले एक लंबी ट्रैवलिंग की बात भी आती है। चलिए इस छोटे से गाने के ब्रेक के बाद मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, यानी आरजे दिलबर के साथ, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज़, 2.0 रेडियो पालनपुर पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए।

आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। और इसी बात पर दोनों में हंसी आ गई, फिर बातचीत शुरू हुई। बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम खुशबू है। खुशबू यहाँ पर टीचर के तौर पे नहीं आती, एक सोशल वर्कर के तौर पे आती है। उसकी एक एनजीओ है जो यहाँ पर बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए कुछ काम करती है। पर ओवरऑल तो कुछ ऐसा ही था, ये सोचा था सुमित ने। और सुमित ने कहा कि आप हर रोज आती? उसने कहा नहीं, मुझे 10 या 15 दिन में एक दो बार आना होता है, और जब भी प्रोजेक्ट होता है, जब बच्चों की छुट्टियां होती है या फिर सैटरडे होता है तो मैं आती हूँ। ये सारी बातचीतों के अंदर अंदर दोनों के बीच में, क्योंकि 2.5 घंटे का रास्ता था, तो ये बातचीत ही उनके बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बना रही थी। कुछ सुमित ने अपनी हल्की सी बातें ऑफिस की, अपने वर्क की बताई, कुछ हंसी और ठहाके हुए। इस दोनों में जैसे ऐसा लग रहा था कि सुमित को कि वो पहले कुछ सालों से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा लग रहा था। और खुशबू ने भी बहुत सारी बातें बताई। एक खुशबू ने बात बताई थी कि जब वो पहली बार साइकिल सीखने के लिए अपने भाई को लेकर बाहर गई थी और फिर गिर पड़ी थी, और आके उसने अपने दादा को ही बताया था, अपने पापा मम्मी को नहीं बताया था क्योंकि चोट ज़्यादा थी और बिना पूछे वो गई थी। मतलब ऐसी चीज़ें कौन शेयर करता है? तो वो ही करता है कि जो दिल से कुछ किसी के साथ कनेक्शन बना पाता है, और यही कनेक्शन की शुरुआत थी। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि मुसाफिर में मिले किसी व्यक्ति के साथ आप कुछ अपनी अंदरूनी बातें जो शायद आपने किसी को नहीं बताई है वो भी शेयर कर लें। यही तो दिल का रिश्ता होता है। जी हाँ, बातों को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए आरजे दिलबर को, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज़ 2.0 पर।

जैसे बारिश का मौसम आता है और मोर की पुकार आपने सुनी होगी, तो ऐसा लगता है कि कितनी इंतहा से वो पुकारता है। वो उसका जो सुर निकलता है वो चीर से बादलों को और बारिश को खींच के लेके आता है। अब ये होता होगा नहीं होता होगा ये तो ऊपर वाला जाने, पर ऐसे ही इन दोनों की बातों के बीच में 1-1.5 घंटे के बाद में एक छोटी सी चाय की टपरी आती है और दोनों रुकते हैं चाय पीने के लिए। पर चाय की दुकान पे जाके दोनों ही पूछते हैं कि कॉफ़ी मिलेगी, और वो चाय वाला बोलता है कि सर और मैडम, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये चाय की टपरी है, कॉफ़ी नहीं है। फिर भी वो बोलता है कि नहीं, रुकिए, मैंने कुछ दिन पहले एक गेस्ट के लिए यहाँ पे कॉफ़ी रखी हुई थी जो आए दिन आते रहते हैं, तो आपको आज कॉफ़ी तो मैं पिलाऊंगा, कोई बात नहीं, आप बैठिए। 4 बजने आए, शाम के 4, 4:30 बजे दोनों कॉफ़ी के लिए, वो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था और प्लास्टिक की चेयर पे वो बैठते हैं, और उसी बैठने में सुमित का हाथ खुशबू के हाथ को छू जाता है। सुमित को लगता है कि एक बिजली सी कौन जाती है, और ऐसा ही खुशबू को भी। थोड़ा सा सहम जाती है पर फिर भी मुस्कुरा के बोलती है कि इट्स ओके, दोस्तों में ये होता रहता है। अब बात दोस्ती में आ गई है, बातें दोस्ती में आ गई है, और खुशबू सारे कामकाज के अलावा कुछ कविताएं भी लिखती थी, कविताएं पढ़ती भी थी, और एक बेहतरीन कविता वो उसको सुनाती है। कविता के अल्फाज तो सुमित बोला कि मैं उतना कविता के लिए याद या रट्टा कर सकूं ऐसा कुछ था नहीं, पर उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि खुशबू ये कहना चाहती थी कि साथ चाहे पल दो पल का हो, पर वो पल दो पल ऐसे लगने चाहिए कि पूरी उम्र जी लिया हो हमने। यानी आप पूरी उम्र की जिंदगी अगर पल दो पल में जी सके ऐसा आपको महसूस होता है, तो वो पल दो पल ही आपके जीवन के सबसे बढ़िया पल होते हैं, और वही प्यार का इजहार करते हैं। उस वक्त समझने में थोड़ी देर लग गई शायद सुमित को। सुमित को अच्छा तो लगा पर वो कविता से इतना जुड़ा नहीं था। उसने फिर एक फिल्मी गाना भी उस वक्त थोड़ा सा गुनगुनाया, पर वैसे उसकी आवाज में वो गाना इतना सूट नहीं होता था, पर खुशबू ने उसे दिल से उसको सराहा। बातें हुई, कॉफी की चुस्कियां लगी, छोटा सा एक वेफर का पैकेट लिया, वेफर की वो कुरकुराहट के बीच में भी इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे परिवार की बातें भी हुई जैसे लग रहा था कि दोनों डेट पे मिले हैं, पर एक दूसरे को पता ही नहीं था शायद। और 7-8 मिनट हो गए, दोनों खड़े हुए, दोनों गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठते वक्त भी सुमित ने पहले जाके खुशबू के लिए दरवाजा खोला, उन्हें बिठाया। खुशबू ने भी बहुत ही ताव और चाव से वहां पे बैठा, जैसे लग रहा था कि उसका प्रेमी ही उसको अपनी मर्सिडीज में बिठाकर जैसे सपनों की दुनिया में सैर कराने ले जा रहा हो। ये सारी चीजें जब सुमित और खुशबू मुझे लिख कर भेज रहे थे,

तब दोनों के अलग अलग मैसेजेस में मैंने कंबाइन किया तो चीजें मुझे एक मिली है, इसीलिए मेरे लिए ये कहानी बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

0: જિલ્લાઓની બહેનોના સ્વાવલંબનને પ્રોત્સાહન આપવા તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત રાખડી તેમજ ઘરગથ્થુ અવનવી વસ્તુઓના પ્રદર્શન સહ વેચાણ કરવામાં આવશે. તો આવો, તારીખ 14-23 ઓગસ્ટ સવારે 11-10 વાગે રાખી મેળો, બ્રહ્મર્ષિ હોલ, જહાનારા બાગની પાસે, પાલનપુર.
1: गाड़ी का पहिया तो चलता रहा, किलोमीटर्स चलते रहे, समय का चक्र भी चलता रहा और 4 घंटे के सफर में 2.5 घंटे बीतना कोई बड़ी बात नहीं थी. अब 15 मिनट बाकी थे शायद मुश्किल से, और खुशबू ने बताया कि अभी आगे वाले 10-12 मिनट के मोड़ पर आप मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ से मुझे टैक्सी मिल जाएगी या फिर ऑटो में कर लूँगी, वहाँ से 6 मिनट के अंतर पर मेरा घर है. सुमित ने कड़सी के लिए बोला कि मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, अब तो हम दोस्त हैं. फिर खुशबू ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि दोस्त है तो फिर फॉर्मेलिटी क्यों, हम इसी बात को आगे क्यों ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहाँ पर जाके शायद आपको या मुझे कुछ और सवाल के जवाब देने पड़े. और इसी बात पर दोनों पे चुप्पी साध गई. पता नहीं दिल की बात हुई नहीं हुई, कॉन्टैक्ट नंबर लेना था नहीं लेना था, मोबाइल दोनों के पास था, कुछ नहीं पूछा, कहाँ पे रहते हैं, 5 मिनट के बाद में कौन सी सोसाइटी है, ये कुछ नहीं पूछा सुमित ने, ना ही खुशबू ने बताया. आराम से वहाँ पर आई खुशबू, वहाँ से नीचे उतरी और उसने अपनी बैग से निकाल कर एक गुलाब की पंखुड़िया जो एक छोटे से पेपर रुमाल में उसने रखी हुई थी, उसने कहा कि आज बच्चे मेरे लिए गुलाब लेके आए थे पर पंखुड़िया ये गर्मी की वजह से गिर गई है, पर मैंने उसको संभाल के रखा है. मैं आपको कुछ और नहीं पर ये एक भेंट देना चाहूँगी एक दोस्त को. सुमित उसे देखता रहा. 2 मिनट के बाद उसने वो पेपर नैपकिन वाली गुलाब की पंखुड़ियों को अपने हाथ में लिया और खुशबू एक स्माइल देकर वहाँ से निकली. थोड़ी कॉर्नर पर ऑटो खड़ी थी उसमें बैठी. उसने पीछे मुड़कर भी देखा. सुमित ने कांच से देखकर उसको हाथ से बाय बाय कहा और कोई लफ्ज की एक दूसरे के पास कोई आवाजाही नहीं हुई और खुशबू की ऑटो दिखती रही तब तक वो खड़ा रहा. फिर वो भी निकल गया अपनी मंजिल पर. वो पेपर नैपकिन में गुलाब की पंखुड़िया थी, उसने वो अपनी रोज की जो बातें लिखता था उसकी डायरी जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर थे उसमें रखकर वो पहुंच गया. शाम हो चुकी थी, काम हो चुका, डिनर हो चुका, 4-5 दिन भी निकल गए पर मन में सुमित के लगता था कि कुछ रह गया है, कुछ वो मुसाफरी में मेरा छूट गया है. पर अब कैसे मिलेगा, न कॉन्टैक्ट नंबर, न पूरा नाम, न सोसाइटी, बस एक ही था कि वो वहाँ पे रुकी थी. और ये भी नहीं पता था कि खुशबू कौन से दिन जाती थी, क्योंकि उसने बताया था कि वो डिसाइडेड दिन नहीं होता था, वो जब भी उसका दिल करता था उस गांव में जाती थी. उसके बाद 3-4 महीने होने को आए और फिर सुमित से रहा नहीं गया. वो पंखुड़िया रोज पेपर नैपकिन से खोलकर उसे देखता था, थोड़े से दिल को सहलाता था और फिर वापिस उसने 3-4 महीने के बाद 1 हफ्ते तक उसी रूट पर आना और जाना छुट्टी लेकर किया कि अगर खुशबू मिल जाए, क्योंकि पूछा किसे जाए कि खुशबू कहाँ रहती है, ये तो खुशबू थी. बात को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आरजे दिलबर के साथ. सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर.

वो कहते हैं ना कि अगर सही वक्त सही जगह पर सही इंसानों के बीच में और उन इंसानों को उस सही बात करने का मौका और सही अल्फाज मिल जाए तो फिर बात बन जाती है। पर ऐसा नहीं हुआ सुमित और खुशबू के बीच। 3-4 महीने के बाद में वापस दूसरे 2 महीने के बाद में 1.5 महीना शायद हुआ होगा और वापस सुमित ट्राई करता है, नहीं मिलती है खुशबू। खुशबू की ओर से क्या होता है ये तो पता ही नहीं था। ऐसे ही ऐसे 1.5 साल निकल गया। सुमित के पास बहुत रिश्ते आए। सुमित बताता है कि पर मैं कैसे मान लूं कि खुशबू मेरे से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मुझे अब एहसास था कि मेरा दिल तो वहां पर छूट गया है, मुझे उसे वापस लाना है। 1.5 साल बाद वापस तब उसके जहन में आया कि मैंने ये क्यों नहीं किया कि उसी गांव में जाकर वहां के लोगों को पूछा नहीं कि वो कौन थी, कहाँ थी, कैसे थी, मुझे उससे मिलना है। और 1.5 साल बाद ये बात सुमित को उसकी छोटी बहन बताती है कि भैया आपकी स्टोरी में मुझे लगता है कि आपको उस गांव में जाना चाहिए, वहां पे जाके आप रोज पूछते या फिर वहां पे 1-2 दिन रुक जाइए या फिर उसी दिन आप सुबह से शाम तक पूछिए, कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई स्कूल तो बताएंगे, 1.5 साल बाद भी लोग तो वहां पे होंगे और ऐसा थोड़ी है कि उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो अभी 6 महीने पहले तक भी अगर वो काम कर रही है तो वहां के लोग खुशबू दीदी को जानते होंगे, आप उन्हें ले आइए, मुझे दीदी ने उसको अपनी भाभी बनाना है। छोटी सी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती अपनी बहन ने जब ये बात उसको कही तब सुमित के जहन में आया कि सच में यही सही वक्त है और वो दूसरे दिन सुबह में छुट्टी लेकर पहुंच गया उस गांव में। वहां पर आज भी वो ककड़ी बेचने वाली आंटी बैठी थी, वो उसे देखकर पहचान गई और उसने बोला कि अरे बाबू आप वही हो ना, अब 1.5 साल पहले यहां से हमारी खुशबू दीदी को बिठा के लेके गए थे, फिर आप कभी आए ही नहीं, आप ऐसा क्यों किए? अब सुमित को लगा कि ये क्या है, मैं यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आंटी भी मेरे लिए, मतलब ये बूढ़ी औरत मेरे लिए यहां पर राह तक रही है। वो कुछ बोले उससे पहले ही वहां पे कॉर्नर पे एक और बंदा बैठा हुआ था, ऑटो वाला, वो तुरंत आया और बोला अरे साहब आप कितनी देर के बाद आए हैं, चलिए चलिए आपके लिए तो पूरे सारा हमारा ऑटो वाला जो एसोसिएशन है यहाँ पर बैठा रहता है, क्योंकि खुशबू दीदी ने हमारे गांव की हमारे बच्चों की सीरत बदल दी है, वो तो यहीं पे आके बस गई है, दूसरे दिन से आने के बाद वो यहीं पे रुकी है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि किसी ना किसी दिन आप यहाँ पे आओगे, आपका इंतजार तो बड़ा लंबा रहा, क्या बाबू आपने शादी तो नहीं कर ली ना? अब इसी

बात पर सुमित आंखों से आंसू आने लगे। वो एक गुजराती में बहुत ही प्यारी मेरी गजल है, जिसकी दो पंक्तियां मैं हर बार किसी मौके पर जगह मिलती है तो मैं बताता हूं। जे आंसू खोऊ छू एनो मने अवेज मळे, के हूं रड़ू तो तुम्हारा नयन मां भेज मळे। शायद खुशबू ने इसी कविता को, इसी गजल को अपनी बना लिया था कि मैंने आंसू खोने कि शुरुआत की है तो मैं खोऊंगी, पर इस आंसू का बदला मुझे मिलना चाहिए, तुम्हारी आंखों में भी वो प्यार छलकना चाहिए। और उस दिन सुमित वहां पे था, ऑटो धूल उड़ाती हुई सीधी निकलकर सामने कान्हा जी वाला मंदिर वाला चौक था, उसके एग्जैक्टली सामने एक पुरोहित जी का मकान था, उसकी कोने में एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर तीन चार गुलाब के पौधे थे। और सुमित ने अपनी पॉकेट से वो रुमाल निकाला, पेपर रुमाल जिसको उसने अपने कॉटन रुमाल में रखा हुआ था, उसमें कुछ पंखुड़ियाँ थी, वो खोली और वो देखते रहा। वो पंखुड़ियों की खुशबू थी या फिर वो पौधे जो लगे हुए थे उसके गुलाब की, या फिर उस कमरे में आधी खुली हुई खिड़की से आ रही खुशबू थी, सारी खुशबू दिल को रोमांचित कर रही थी। और जो ऑटो वाला बाबू आया था उसने चिल्ला के बोला, खुशबू दीदी आज आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं जा रहा हूं कान्हा जी के मंदिर भोग चढ़ाने के लिए। तुरंत दरवाजा खुला, खुशबू वहां पर खड़ी थी। 1.5 साल कोई बहुत इंतजार देखा जाए तो समय के तौर पे नहीं था, पर हर लम्हा हर क्षण किसी की याद में अगर हमने गुजारनी पड़े तो कैसा लगता है, एक पूरी उम्र की कैद की तरह। ऐसा ही था, थोड़ा सा चेहरा सिकुड़ तो गया था, पर आज भी वो हंसी तो ऐसा लगा कि सारे खिलखिलाहट और चहचहाट पूरे वातावरण में फैल गई। सुमित आगे जाके खड़ा हुआ, अपने घुटनों पर बैठ गया, खुशबू के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूमा और कहा, खुशबू सच में ये सही वक्त आने में देर हो गई, बहुत इंतजार किया, पर मैं सही में तुमसे प्यार करता हूं। और उस वक्त बाहर, क्योंकि ऑटो वाले को इस तरह से भागते हुए देखकर पूरे गांव में से जो लोग घर पे थे उसमें से 6-7 उस मोहल्ले में थे वो सारे बाहर खड़े थे, उन्होंने क्लैपिंग कर लिया, वो खुश हो गए क्योंकि वो इस लव स्टोरी के वो साक्षी थे, वो कहते हैं ना कि वो उसके गवाह थे। बात को आगे बढ़ाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

बाक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतू रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।